बरसों का कारवा आरजी अदनान के साथ ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक लड़का था अर्जुन। हर सोमवार उसे लगता था यार फिर वही काम, वही बॉस, वही थकान। लेकिन एक दिन बस स्टॉप पर उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी को जो हर सुबह 5 बजे अखबार बांटते थे। अर्जुन ने पूछा, बाबा आप इस उम्र में आराम नहीं करते? वो मुस्कुराए और कहा, आराम तो तब करूंगा बेटा जब जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। अभी तो घर चलाना है, पोती की पढ़ाई करनी है, हर दिन मेरे लिए मौका है, थकान नहीं। उस दिन अर्जुन का नजरिया बदल गया। अब वो हर सोमवार को मंडे ब्लूज नहीं बल्कि मंडे बूस्ट कहता है, क्योंकि मंडे हमें याद दिलाता है कि हम जिंदा है, हम काम कर सकते हैं, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं।

0: अक्सर हमने एक लफ्ज के बारे में सुना होगा, सेल्फ लव। कैरा रील्स में हमने देखा है या मोटिवेशनल वीडियोस में देखा है सेल्फ लव, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है? तो इसी पर आज हम बात करेंगे हमारे साथ से साइकेट्रिक्स डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर। हेलो सर, आपका स्वागत है।
1: हेलो,
0: कैसे हो सर आप?
1: आई एम गुड।
0: सर आपने किया है खुद से प्यार, सेल्फ लव?
1: हाँ बिल्कुल करता हूँ।
0: कब से?
1: उसके बारे में समझ आई तब से और उसके वैल्यूज पता चले, देन आई स्टार्टेड लिविंग माय सेल्फ।
0: एग्जैक्टली, जब खुद की वैल्यू पता चलती है, उस चीज की वैल्यू पता चलती है, तो इंसान सेल्फ लव करता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे सर, क्योंकि सेल्फ लव ये बहुत सुना है, लेकिन सेल्फ लव और सेल्फिश होने में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है?
1: देखो, सेल्फ लव यानी क्या है ना, कि खुद की वैल्यू करना, ठीक है। जैसे हमें फिजिकली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली हमें खुद को फिट रखने के लिए हम जिस तरह से उसके लिए हम अटेम्प्ट करते हैं या हम ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें अपने अंदर से खुश रहना है, मुझे फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करना है, वैल्यूज भी मुझे बरकरार रखने हैं और मुझे दूसरों का भी रिस्पेक्ट करना है, देन हम उसे कहते हैं कि हाँ ये सेल्फ लव है। अब सेल्फ लव में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आती है कि जिसमें कि क्या होता है, बहुत सारे लोग है ना आउट ऑफ द वे जाके खुद को यानी ट्रबल अगर हो रहा है या परेशानी हो रही है तो भी दूसरों के लिए वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट इसमें क्या होता है ना कि उनमें उससे स्ट्रेस आ सकता है, उनमें फिजिकल एग्जर्शन आ सकता है, बर्नआउट हो सकता है, तो लोगों को उसके लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। तो हम लोग हमारे खुद के लिए, हमारे फैमिली के लिए हम कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तब उसे कहा जाता है कि सेल्फ लव। इक्वली बट हम लोग दूसरे के वैल्यूज भी रिस्पेक्ट करते हैं एंड दूसरों को भी उनकी इमोशनल और उनकी भावनाएं का भी हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर हम हमारे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मैं खुद के लिए कुछ चीजें करूंगा जो कि मेरे घर वाले या मेरे लिए बेनिफिशियल हो, या मेरे फिजिकली मुझे हार्म ना करे, इमोशनली हार्म ना करे, साइकोलॉजिकली हार्म ना करे, और मैं कुछ बाउंड्री सेट करूं, तो हम उसे कहते हैं कि सेल्फ लव है। सेल्फिश मींस क्या है ना, उसमें चीजें सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लिए ही करना, दूसरे के वैल्यूज का सम्मान नहीं करना, अगर उसे दिक्कत आ रही है मेरे से कुछ बात करने से, या मैं एक चीज इस तरह से डिसीजन दे रहा हूँ कि दूसरों को हार्म हो रहा है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसे तकलीफ हो रही है दूसरों को, पर मैं मेरे ही बारे में सोच रहा हूँ, देन हम उसे कहते हैं कि देन दिस इज सेल्फिश लव। बट सेल्फ लव में इट इज नॉट देयर। सेल्फ लव में ये है कि हम खुद के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करते हैं, हम हमारा खुद का ख्याल करते हैं, क्योंकि मैं जैसे

0: अगर मेरे कोई प्रिय व्यक्ति हो या मेरा कोई प्रिय फ्रेंड हो जिसके हम आदर सम्मान करते हैं, उसे रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह हम खुद का भी करना चाहिए, हमारे खुद के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में सोच, तब उसे कहा जाता है कि दिस इज सेल्फ लव।
1: तो सेल्फ लव क्या होता है ये अभी हमने जाना, तो ये सारी बातें याद रखिएगा और खुद से प्यार करते रहिएगा। ऐसे टिप्स हम हर दिन जानेंगे अपने इस शो में, तब तक स्टे ट्यून।
2: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश सराखों पर आरजे अदनान तुमच्या सोबत आहे इन द शो
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम एंड आज गाण्याची फरमाइश आलेली आहे सौरभ इंगळे यांच्याकडून या गाण्यासाठी
2: चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले
0: आज चल के तुझे बेहतरीन गाने की फरमाइश की है सौरभ जी ने तो उनकी फरमाइश पूरी करते हैं और गाने की खास बात यह है कि इस गाने को गाया भी था किशोर कुमार जी ने म्यूजिक किशोर कुमार जी का ही था और लिरिक्स भी ना तो किशोर कुमार जी ने ही लिखे थे चल इफ्रा भी गाना प्ले करते बाय द वे अगर आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर और सुनते रहिएगा

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: मुझे लगता है कि वक्त से वक्त निकाल करना तो इंसान ने कहीं ना कहीं घूमकर आना ही चाहिए ताकि थोड़ा ब्रेक मिल सके। मैं भी कुछ दिन पहले जयपुर गया था, इसके बाद फिर हैदराबाद गया था, ऐसे टूरिस्ट प्लेस गया था जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे माहौल देखने को मजा आता है। और एक बात मैंने नोटिस की रेलवे स्टेशन के ऊपर कि उन जगहों पर ना टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक डेस्क बनाया गया है जहाँ पर ना उस शहर में जो जो टूरिस्ट प्लेस है किस तरीके से वहाँ पर आप जा सकते हैं, पैकेज क्या है, इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो सवाल एक उठता है कि यार अपना छत्रपति संभाजीनगर पर्यटनाची राजधानी आपण असं म्हणतो त्याला, आपल्या शहरात 52 दरवाजे आहेत, 52 पुऱ्याचा आपला शहर आहे, इतका मोठा ऐतिहासिक वारसा आपल्याला लाभलेला आहे, पण टुरिझम डिपार्टमेंट कडून एकही मदत केंद्र ना बस स्टँडवर आहे ना रेल्वे स्टेशनवर आहे। तर अशा प्रकारचे मदत केंद्र इन्फॉर्मेशन डेस्क आपल्या शहरातील बस स्टॉपवर रेल्वे स्टेशनवर तयार झाले तर जे पर्यटक आहेत ना त्यांची गैरसोय होणार नाहीये। क्योंकि ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि जब टूरिस्ट अपने शहर में आते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं होती किस तरीके से किस जगह पर कैसे जाया जाए, तो वो रिक्शे वाले को पूछते हैं, टैक्सी वाले को पूछते हैं, और टैक्सी और रिक्शे वाले ना तो एक अलग ही ट्रेंड शुरू किया है बिजनेस वाला उन्होंने, मतलब कोई नया इंसान देखा उसको कहीं घुमाना है तो लोकल के अंदर तकरीबन 2,000 से 3,000 रुपए तक का भाड़ा वसूल करते हैं, एंड अगर आउट ऑफ सिटी जाना है, अजिंठा एलोरा जाना है तो 6,000-7,000 या कोई 8,000 रुपए भी वसूल करता है टूरिस्ट से। और वो टूरिस्ट नए अपने शहर में होते उन्हें इतना पता नहीं होता है तो कुछ इस तरीके से उनसे लूट शुरू है। तो सवाल ये उठता है यार अपने शहर में भी इतना बड़ा टूरिज्म डिपार्टमेंट है तो उन्होंने एक हेल्प डेस्क या तो फिर इन्फॉर्मेशन डेस्क अपने शहर में शुरू कर देना चाहिए, फिर चाहे एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, ताकि जब टूरिस्ट अपने शहर में आते हैं तो वो प्रॉपर प्लान कर सके कहाँ किस तरीके से घूमना है और उन्हें प्रॉपर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी सिटीज में मैंने देखा वैसे अपने शहर में भी हो सकता है, पर कब होगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जवाब मिलेगा बताऊंगा जरूर। अगर अब मौसम शुरू है घूमने का तो आप भी जरा घूम कर आइएगा, और बाकी तो सुनते रहिएगा।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: अपने छत्रपति संभाजीनगर में सिग्नल तो है लेकिन चलते है क्या? यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, आरजी अदनान आपके साथ है। और बात कुछ ऐसी है कि शहर में जो सिग्नल है वो सीधे साधे नहीं है, नॉर्मल नहीं है, दैट्स कॉल्ड स्मार्ट सिग्नल्स। जी हाँ, स्मार्ट तरीके से सिग्नल चलते हैं कि उल्टी गिनती कभी को आरियत शुरू कर देते और उल्टे तरीके से सिग्नल चलते है। कभी ग्रीन सिग्नल होता है तो रेड लाइट लगती है और कभी रेड लाइट पर ग्रीन सिग्नल दिखाई देता है। कुछ इस तरीके से टाइमिंग इसका हो रहा है। और जो टाइमर होता है ना लगाया हुआ, वो कभी कभार बीच में रुक जाता है, सही चलता है तो कभी रॉन्ग तरीके से चलता है, बीच में ही ना तो सिग्नल बंद हो जाते हैं, चलते चलते सिग्नल बंद हो जाते हैं और टाइमर तो दिखाई ही नहीं देता। एंड इस वजह से सेवन हिल के पास ना तो अक्सर ट्रैफिक जाम हो रहा है। और बस सेवन हिल से नहीं, समर्थ नगर, मिल कॉर्नर और शहर में के बहुत सारे ऐसे सिग्नल है जो कि स्मार्ट है लेकिन खराब हो चुके हैं और इसका मेंटेनेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बट इसके ऊपर कोई ख्याल नहीं दे रहा है। और ये आज से नहीं, बहुत टाइम से ये सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, खराब खराब और खराब वाली, लेकिन इसको ठीक ठीक और ठीक करने वाला टाइम अब तक आया नहीं। शायद जब टाइम आएगा तब ये ठीक करेंगे, लेकिन कब होगा पता है क्या? जब तक इस सिग्नल की वजह से कोई बड़ा हादसा ना हो या किसी की जान ना चली जाए या कोई जख्मी ना हो जाए, तब तक ये सिग्नल ऐसे ही रहेंगे। जब ठोकर लगेगी तब जाके ये सिग्नल ठीक हो जाएगी। और ट्रैफिक जाम तो अब रोज ही हो रहा है तो इसकी आदत लग गई है। रास्तों का तो कुछ होता नहीं है मेंटेनेंस, इस सिग्नल का कब होगा ये भी नहीं पता। सो घर से थोड़ा जल्दी निकले ताकि आप डेस्टिनेशन पर वक्त पर पहुंचे। बाकी अब एंजॉय करें आरजे अदनान के साथ सुपर डुपर हिट गाने ऑन MGM 90.8 FM।
1: Only on MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: आज के वक्त में किस टाइप के और किस तरीके के फ्रॉड आ रहे हैं ना, देखकर ताज्जुब होता है। हेलो, माय सेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और आपने साइबर फ्रॉड के बारे में सुना होगा, फिर ऑनलाइन अरेस्ट के बारे में सुना होगा, और अपने अकाउंट से एक क्लिक में पूरा की पूरा पैसा खाली हो जाता है। ये सब फ्रॉड के बारे में हमें पता है, लेकिन आजकल एक नया फ्रॉड मार्केट में आ गया है, वो है प्रोफेसर फ्रॉड इस नाम से। अब इसमें क्या होता है, किसी कॉलेज के प्रोफेसर को एक कॉल आता है और सामने वाला बंदा कहता है कि सर मेरा नाम एक्स वाई जेड है, मैं आपके ही कॉलेज का पास आउट हूँ, फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत सीरियस है, मेरे पापा गुजर गए और मेरे पास अभी हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसा नहीं है। और वो बंदा इतना रोता है, इतने मिन्नत करता है, और सामने वाले बंदे को लगता है कि नहीं यार, ये जेन्युइनली सच बात कह रहा होगा, मेरे कॉलेज का है, मेरा ही स्टूडेंट है। तो प्रोफेसर को ऐसा लग रहा होगा, और प्रोफेसर एंड स्टूडेंट का एक रिश्ता होता है भाई, एक दूसरे को समझते हैं, और अक्सर प्रोफेसर ना तो अपने स्टूडेंट्स की मदद करते। तो प्रोफेसर लोगों को लग रहा था कि यार ये तो अपना जेन्युइन कोई बंदा होगा अपने कॉलेज का, इसकी मदद करते हैं। और फिर मदद करने के बाद पता चला कि यार ये तो एक फ्रॉड था, ऐसा कोई है ही नहीं। तो कुछ इस तरीके के फ्रॉड भी अपने शहर में आजकल बढ़ रहे हैं, जिसको कहते हैं प्रोफेसर फ्रॉड। और प्रोफेसर के नाम और नंबर कहाँ से निकाल रहे हो, कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर से। और पिछले एक महीने से ऐसा फ्रॉड अपने शहर में चल रहा है, अलग अलग टीचर्स को प्रोफेसर को ऐसे कॉल आ रहा है, तो थोड़ा बच के रहिएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी सर टीचर प्रोफेसर जी कॉल आती होगी ना, तो उसको रिचेक कीजिएगा कि सच में आपके किसी स्टूडेंट का कॉल है या फिर फ्रॉड कॉल है। अगर सच में बंदा पैसे मांग रहा हो और आप उसको जानते हो और मदद करना चाहते हो, तो हॉस्पिटल जाकर मदद कीजिएगा, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर मत कीजिएगा। तो ऐसी पूरी गैंग अभी अपने शहर में घूम रही है, तो बी से प्रोफेसर अब अगले टारगेट आप भी हो सकते हो। तो अननोन कॉल मत उठाइए, अगर उठा ही रहे किसी की मदद करना है, तो पहले उसका बैकग्राउंड चेक कीजिएगा कि सच में इसको मदद की जरूरत है या एक फ्रॉड है। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे एक पता चली जो आपको भी जानना बहुत जरूरी है ऐसा मुझे लगता है। हेलो, माय सेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और हम सभी ने ना तो अपने शहर का ये सुपर डुपर हिट गाना तो सुना ही होगा, जिसके बिना हमारी सुबह दोपहर शाम आजकल होती नहीं है। और एक गाने में एक अलग वाइब तो है यार, और जैसे गाना प्ले होता है तो हम सभी लोग घर के बाहर आते ही है।

0: और यू नो व्हाट, ये जिंगल किसने गाई है पता है? ये जिंगल गाई है शान। जी हाँ, बॉलीवुड के सुपर डुपर हिट सिंगर शान की आवाज है। मुझे भी अभी पता चला था, आई थिंक मुझे बहुत लेट पता चला होगा ऐसा लगता है, और बहुतों को पता भी होगा, किसी को नहीं होगा तो पता चल जाएगा। और ये ऐसी जिंगल है ना भाई, अपने लवों पर ही आ ही जाती है। और आजकल हम सभी की नींद ना तो किसी अलार्म से नहीं बल्कि इस जिंगल की वजह से खुलती है। अपने शहर में ना तो सफाई भी आजकल बहुत दिख रही है, एंड ये जो घंटा गाड़ी है अब रात के वक्त भी और दिन भर भी हर एक गली मोहल्ले में आती है, कॉलोनी में आती है और पूरी सफाई करती है। इससे आई होप कि बहुत जल्दी अपना शहर भी एकदम साफ सुथरा हमें नजर आएगा। एक नंबर व्हील छत्रपति संभाजी नगर, सो स्टे ट्यून।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

ये गाना सुनने के बाद ना तो आपका स्ट्रेस एकदम खत्म हो सकता है। आरजी अदनान आपके साथ है और गानों के किस्सों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और ये गाना हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक राग अहिर भैरव पर बना हुआ है। म्यूजिकल थेरेपी होती है ना तो उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन को छू मंतर करने के लिए इस राग का यूज किया जाता है। ये राग को ना मॉर्निंग राग ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि इसे मॉर्निंग के वक्त ही गाया जाता है, सुबह 8 से 10 बजे के दरमियान। अहिर मतलब गाय भैंस चराने वाला, और ये राग भी गाय के गले में जो घंटियां होती ना तो उससे डेवलप हुआ है ऐसा भी कहा जाता है। इस राग को मॉर्निंग के वक्त में सुनने के बाद दिन भर आपका मन एकदम स्ट्रेस फ्री होता है और सुकून भरा दिन आपका गुजरता है। और अपनी इंडस्ट्री में इस राग पर बहुत सारे गाने बने हैं जैसे कि तो चलिए फिर इसी राग पर बनाया हुआ ये गाना अल बेला सजन आयो रे, ये अभी हम सुनते हैं। स्टे ट्यून विद आरजी अदनान।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

आगे का रास्ता खराब था, ये लगा था बड़ा बोर्ड। मैंने बस ये सोचा होगा छोटा मोटा मोड़। हुआ जब ये हादसा और आया मुझे होश, तब जाके जाना बस यहीं तक थी।

आगे का रास्ता खराब था, ये लगा था बड़ा बोर्ड। मैंने बस ये सोचा होगा छोटा मोटा मोड़। हुआ जब ये हादसा और आया मुझे होश, तब जाके जाना बस यहीं तक थी रोड।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: अपने छत्रपति संभाजीनगर में सिग्नल तो है लेकिन चलते है क्या? यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, आरजी अदनान आपके साथ है। और बात कुछ ऐसी है कि शहर में जो सिग्नल है वो सीधे साधे नहीं है, नॉर्मल नहीं है, दैट्स कॉल्ड स्मार्ट सिग्नल्स। जी हाँ, स्मार्ट तरीके से सिग्नल चलते हैं कि उल्टी गिनती कभी को आरियत शुरू कर देते, और उल्टे तरीके से सिग्नल चलते है। कभी ग्रीन सिग्नल होता है तो रेड लाइट लगती है, और कभी रेड लाइट पर ग्रीन सिग्नल दिखाई देता है। कुछ इस तरीके से टाइमिंग इसका हो रहा है। और जो टाइमर होता है ना लगाया हुआ, वो कभी कभार बीच में रुक जाता है, सही चलता है तो कभी रॉन्ग तरीके से चलता है, बीच में ही ना तो सिग्नल बंद हो जाते हैं, चलते चलते सिग्नल बंद हो जाते हैं और टाइमर तो दिखाई ही नहीं देता। एंड इस वजह से सेवन हिल के पास ना तो अक्सर ट्रैफिक जाम हो रहा है। और बस सेवन हिल से नहीं, समर्थ नगर, मिल कॉर्नर और शहर में के बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स है जो कि स्मार्ट है लेकिन खराब हो चुके हैं, और इसका मेंटेनेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट इसके ऊपर कोई ख्याल नहीं दे रहा है। और ये आज से नहीं, बहुत टाइम से ये सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, खराब खराब और खराब वाली, लेकिन इसको ठीक ठीक और ठीक करने वाला टाइम अब तक आया नहीं। शायद जब टाइम आएगा तब ये ठीक करेंगे, लेकिन कब होगा पता है क्या? जब तक इस सिग्नल की वजह से कोई बड़ा हादसा ना हो, या किसी की जान ना चली जाए, या कोई जख्मी ना हो जाए, तब तक ये सिग्नल ऐसे ही रहेंगे। जब ठोकर लगेगी तब जाके ये सिग्नल ठीक हो जाएगी। और ट्रैफिक जाम तो अब रोज ही हो रहा है तो इसकी आदत लग गई है। रास्तों का तो कुछ होता नहीं है मेंटेनेंस, इस सिग्नल का कब होगा ये भी नहीं पता। सो घर से थोड़ा जल्दी निकले ताकि आप डेस्टिनेशन पर वक्त पर पहुंचे। बाकी अब एंजॉय करें आरजे अदनान के साथ सुपर डुपर हिट गाने ऑन MGM 90.8 FM।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: आज के वक्त में किस टाइप के और किस तरीके के फ्रॉड आ रहे हैं ना, देखकर ताज्जुब होता है। हेलो, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और आपने साइबर फ्रॉड के बारे में सुना होगा, फिर ऑनलाइन अरेस्ट के बारे में सुना होगा, और अपने अकाउंट से एक क्लिक में पूरा की पूरा पैसा खाली हो जाता है। ये सब फ्रॉड के बारे में हमें पता है, लेकिन आजकल एक नया फ्रॉड मार्केट में आ गया है, वो है प्रोफेसर फ्रॉड इस नाम से। अब इसमें क्या होता है, किसी कॉलेज के प्रोफेसर को एक कॉल आता है और सामने वाला बंदा कहता है कि सर मेरा नाम एक्स वाई जेड है, मैं आपके ही कॉलेज का पास आउट हूँ, फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत सीरियस है, मेरे पापा गुजर गए और मेरे पास अभी हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसा नहीं है। और वो बंदा इतना रोता है, इतने मिन्नतें करता है, और सामने वाले बंदे को लगता है कि नहीं यार, ये जेन्युइनली सच बात कह रहा होगा, मेरे कॉलेज का है, मेरा ही स्टूडेंट है। तो प्रोफेसर को ऐसा लग रहा होगा, और प्रोफेसर एंड स्टूडेंट का एक रिश्ता होता है भाई, एक दूसरे को समझते हैं, और अक्सर प्रोफेसर ना तो अपने स्टूडेंट्स की मदद करते। तो प्रोफेसर लोगों को लग रहा था कि यार ये तो अपना जेन्युइन कोई बंदा होगा अपने कॉलेज का, इसकी मदद करते हैं। और फिर मदद करने के बाद पता चला कि यार ये तो एक फ्रॉड था, ऐसा कोई है ही नहीं। तो कुछ इस तरीके के फ्रॉड भी अपने शहर में आजकल बढ़ रहे हैं, जिसको कहते हैं प्रोफेसर फ्रॉड। और प्रोफेसर के नाम और नंबर कहाँ से निकाल रहे हो, कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर से। और पिछले एक महीने से ऐसा फ्रॉड अपने शहर में चल रहा है, अलग अलग टीचर्स को प्रोफेसर को ऐसे कॉल आ रहा है, तो थोड़ा बच के रहिएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी सर टीचर प्रोफेसर जी कॉल आती होगी ना, तो उसको रीचेक कीजिएगा कि ये सच में आपके किसी स्टूडेंट का कॉल है या फिर फ्रॉड कॉल है। अगर सच में बंदा पैसे मांग रहा हो और आप उसको जानते हो और मदद करना चाहते हो, तो हॉस्पिटल जाकर मदद कीजिएगा, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर मत कीजिएगा। तो ऐसी पूरी गैंग अभी अपने शहर में घूम रही है, तो बी से प्रोफेसर अब अगले टारगेट आप भी हो सकते हो। तो अननोन कॉल मत उठाइए, अगर उठा ही रहे किसी की मदद करना है, तो पहले उसका बैकग्राउंड चेक कीजिएगा कि सच में इसको मदद की जरूरत है या ये एक फ्रॉड है। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे एक पता चली जो आपको भी जानना बहुत जरूरी है ऐसा मुझे लगता है। हेलो मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और हम सभी ने ना तो अपने शहर का ये सुपर डुपर हिट गाना तो सुना ही होगा जिसके बिना हमारी सुबह दोपहर शाम आजकल होती नहीं है। और एक गाने में एक अलग वाइब तो है यार, और जैसे गाना प्ले होता है तो हम सभी लोग घर के बाहर आते ही है।

और यू नो व्हाट, ये जिंगल किसने गाई है पता है? ये जिंगल गाई है शान। जी हाँ, बॉलीवुड के सुपर डुपर हिट सिंगर शान की आवाज है। मुझे भी अभी पता चला था, आई थिंक मुझे बहुत लेट पता चला होगा ऐसा लगता है, और बहुत लोगों को पता भी होगा, किसी को नहीं होगा तो पता चल जाएगा। और ये ऐसे जिंगल है ना भाई, अपने लवों पर ही आ ही जाती है। और आजकल आप सभी की नींद ना तो किसी अलार्म से नहीं बल्कि इस जिंगल की वजह से खुलती है। अपने शहर में ना तो सफाई भी आजकल बहुत दिख रही है, एंड ये जो घंटा गाड़ी है अब रात के वक्त भी और दिन भर भी हर एक गली मोहल्ले में आती है, कॉलोनी में आती है और पूरी सफाई करती है। इससे आई होप कि बहुत जल्दी अपना शहर भी एकदम साफ सुथरा हमें नजर आएगा। एक नंबर हुईल छत्रपति संभाजी नगर, सो स्टे ट्यून्ड।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: मुझे लगता है कि वक्त से वक्त निकाल करना तो इंसान ने कहीं ना कहीं घूमकर आना ही चाहिए ताकि थोड़ा ब्रेक मिल सके। मैं भी कुछ दिन पहले जयपुर गया था, इसके बाद फिर हैदराबाद गया था, ऐसे टूरिस्ट प्लेस गया था जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे माहौल देखने को मजा आता है। और एक बात मैंने नोटिस की रेलवे स्टेशन के ऊपर कि उन जगहों पर ना टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक डेस्क बनाया गया है जहाँ पर ना उस शहर में जो जो टूरिस्ट प्लेस है किस तरीके से वहाँ पर आप जा सकते हैं, पैकेज क्या है, इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो सवाल एक उठता है कि यार अपना छत्रपति संभाजीनगर पर्यटनाची राजधानी अपन असं म्हणतो त्याला, आपल्या शहरात 52 दरवाजे आहेत, 52 पुऱ्याचा आपला शहर आहे, इतका मोठा ऐतिहासिक वारसा आपल्याला लाभलेला आहे, पण टूरिझम डिपार्टमेंट कडून एकही मदत केंद्र ना बस स्टँडवर आहे ना रेल्वे स्टेशनवर आहे। तर अशा प्रकारचे मदत केंद्र इन्फॉर्मेशन डेस्क आपल्या शहरातील बस स्टॉपवर रेल्वे स्टेशनवर तयार झाले तर जे पर्यटक आहेत ना त्यांची गैरसोय होणार नाहीये। क्योंकि ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि जब टूरिस्ट अपने शहर में आते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं होती किस तरीके से किस जगह पर कैसे जाया जाए, तो वो रिक्शे वाले को पूछते हैं, टैक्सी वाले को पूछते हैं, और टैक्सी और रिक्शे वाले ना तो एक अलग ही ट्रेंड शुरू किया है बिजनेस वाला। उन्होंने मतलब कोई नया इंसान देखा उसको कहीं घुमाना है तो लोकल के अंदर तकरीबन 2,000 से 3,000 रुपए तक का भाड़ा वसूल करते हैं, एंड अगर आउट ऑफ सिटी जाना है, अजिंठा एलोरा जाना है, तो 6,000-7,000 या कोई 8,000 रुपए भी वसूल करता है टूरिस्ट से। अब वो टूरिस्ट नए अपने शहर में होते उन्हें इतना पता नहीं होता है तो कुछ इस तरीके से उनसे लूट शुरू है। तो सवाल ये उठता है यार अपने शहर में भी इतना बड़ा टूरिज्म डिपार्टमेंट है तो उन्होंने एक हेल्प डेस्क या तो फिर इन्फॉर्मेशन डेस्क अपने शहर में शुरू कर देना चाहिए, फिर चाहे एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, ताकि जब टूरिस्ट अपने शहर में आते हैं तो वो प्रॉपर प्लान कर सके कहाँ किस तरीके से घूमना है और उन्हें प्रॉपर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी सिटीज में मैंने देखा वैसे अपने शहर में भी हो सकता है, पर कब होगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जवाब मिलेगा बताऊंगा जरूर। अगर अब मौसम शुरू है घूमने का तो आप भी जरा घूम कर आइएगा और बाकी तो सुनते रहिएगा।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

वैसे बात जनरेशन की कर रहा था ना, तो एक बात तो है, थैंक गॉड क्योंकि आज की जनरेशन टीवी नहीं देखती। हेलो, माय सेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। भाई साहब, एक टाइम था जब ना तो टीवी न्यूज चैनल के ऊपर जो न्यूज आती थी उसके ऊपर लोग आग बन करके भरोसा करते थे और लगता था कि भाई ये एंकर जो कह रहा है ना एकदम सच कह रहा होगा। और आज एक वक्त आ गया है जब हर किसी को डाउट होता है, क्या ये जो एंकर ने कहा अभी न्यूज चैनल में ये सच बात होगी क्या, या झूठ कह रहा होगा, या बस टीआरपी के लिए कह रहा होगा। मैंने खुद देखा, एक टाइम था हमारे बचपन में जब पापा न्यूज चैनल देखते थे, हर दिन न्यूज आती थी, सलीके से आराम से समझाती हुई आती थी, नो टीआरपी गेम, नो चिल्लाना, नो इसको उसको बुरा भला कहना, हर किसी की इज्जत करना, और लगता भी था कि हम टीवी पर न्यूज देख रहे हैं। और आज के वक्त में लगता है कि यार हम न्यूज नहीं कॉमेडी शो देख रहे हैं, और हर कोई अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दों पर बात करता है। और पता नहीं लोग कहां से लाते हैं वो, जो कि डिबेट कम और धमकी, चिल्लाना और फेक न्यूज ज्यादा देते हैं। सो थैंक गॉड हमारी जनरेशन को, क्योंकि हमने टीवी पर न्यूज चैनल देखना कम कर दिए, इंस्टाग्राम पर रील्स देखना थोड़ा ज्यादा किया, क्योंकि रील्स के ऊपर आज के वक्त में जितनी सारी न्यूज आ रहे हैं ना, वो लगता है कि यार ऑथेंटिक न्यूज है, ऑन ग्राउंड वाली न्यूज है, उसके ऊपर कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ है। हाँ, कुछ कुछ होते हैं फिल्टर लगाए वाले न्यूज और फेक न्यूज भी, वो समझ में आ जाते, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे है यूट्यूब पर कोई मिक्स मसाला नहीं होता। तो सवाल यही होता है यार कि पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन वो जिंदा है कि आज के वक्त बड़ा सवाल है। जवाब मिले तो जरूर बताना और अपने गिरेबान में भी झांक लेना। समझदार को इशारा काफी।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: मौका मिले तो भगवान भेज खाए। कुछ लोगों का धंधा हुआ है
1: क्या
0: मंदिर में।

0: यहीं पर।
1: यहीं
0: है? ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।